0: இன்னும் சில நொடிகளில் ரவிவாசரி அகில் பாரதிய சங்கீத சபா இசை நிகழ்ச்சி டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: यह आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में हम आपको वी आर नटराजू और उनके साथियों द्वारा
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
4: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
5: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
2: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ETS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPS के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। रूस ने यह नया हमला ऐसे

शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुख्य समाचार। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे। एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। ईरान ने कहा, अमेरिका के प्रतिबंधों और जहाजरानी संबंधी शर्तों को पूरा करने तक हार्मुज डबरू मध्य बंद रहेगा। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला मौका है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरितो ने भारतीय मेहमान नवाजी की तारीफ की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। इस अभ्यास के तहत दोनों देशों के वायुसेनाएं काल्पनिक युद्ध परिस्थितियों के जरिए अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही हैं। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। एक रिपोर्ट।
1: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।

0: में ये ताजा हमले ऐसे समय में हुए हैं जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस दौरान क्रीमिया में भी मतदान हुआ, जो कि एक ब्लैक सी प्रायद्वीप है और साल 2014 में यूक्रेन के साथ संघर्ष के बाद से रूस के नियंत्रण में है। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें अंदेशा है कि रूस जिस तरह पूरे यूरोपीय महाद्वीप में अपने हाइब्रिड अभियान को तेज कर रहा है, उसे देखते हुए वो आने वाले समय में नाटो सदस्य देशों पर भी ड्रोन या मिसाइल हमला कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र से पहले जारी एक संदेश में श्री गुतरेश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संवाद और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। श्री गुतरेश ने कहा कि महासचिव के रूप में ये उनका अंतिम संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र 22 से 28 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों और जहाजरानी संबंधी शर्तों को पूरा करने तक हार्मूज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिफाफ ने यह टिप्पणी की। श्री कालिफाफ ने कहा कि ईरान संघर्ष और बातचीत दोनों जारी रखेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद की है। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वालरिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेनिल वालरिवन, सोनम मस्कर और विद्रसा विनोद की टीम ने देश को ये पदक दिलाया। उधर अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला हॉकी टीम ने उज़्बेकिस्तान पर 19-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही भारतीय महिला बैडमिंटन और टेबल टेनिस टीम ने अपने अपने मैच जीते। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले आई अचानक विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 लोग अब भी लापता हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 55 सेकेंड। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है हर सिंगार। 260, 70 और 80 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का वो खूबसूरत दौर जब हर गीत अपने साथ एक कहानी, एक एहसास और एक याद लेकर आता था। एक तरफ लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे फनकार अपनी आवाज से गीतों में जान डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ मदन मोहन, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जैसे संगीतकार सुरों की नई दुनिया रच रहे थे और इन सुरों को अल्फाज की खूबसूरती देने वाले थे हमारे बेमिसाल गीतकार साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, गुलजार और राजा मेहदी अली खान जैसे कलम के जादूगर। किसी ने मोहब्बत को अल्फाज दिए, किसी ने जुदाई को आवाज दी, किसी ने जिंदगी के फलसफे को गीत बनाया तो किसी ने खामोश एहसासात को नगमे में डाल दिया। मगर दोस्तों, इन सदाबहार गीतों के पीछे सिर्फ धुन और बोल ही नहीं थे, छिपे थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दिलचस्प किस्से, अचानक बनी धुनें, बदले हुए बोल, अनोखे संगीत प्रयोग और फनकारों की बेमिसाल मेहनत। क्योंकि हर खूबसूरत गीत के पीछे एक धुन होती है, एक एहसास होता है और कभी कभी एक ऐसी कहानी जो गीत से भी ज्यादा दिलचस्प होती है। उन्हीं गीतों में से कुछ बेहद खूबसूरत नगमे हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जो आपके दिल के बहुत ही करीब हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में किसी खास शख्स की आमद ऐसी होती है कि जैसे मौसम ही बदल जाए, दिल की सूनी गलियों में बहार उतर आए और हर तरफ मोहब्बत की खुशबू महसूस होने लगे। कुछ ऐसे ही खूबसूरत एहसास समेटे हुए हैं फिल्म जीने की राह का ये बेहद

खूबसूरत सदाबहार गीत। तो आइए दिलों में मोहब्बत रिश्तों में मिठास के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं उसी नगमे के साथ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपकी नजरों ने समझा। लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज में यह नगमा था 1962 में आई फिल्म अनपढ़ से, जिसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने और संगीत था मदन मोहन साहब का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और आपके इस सफर में मैं हूं आपका दोस्त फेरोज, और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार। और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत फिल्म के एक गीत की। दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हम चाह कर भी दिल से जुदा नहीं कर पाते। कोई खास शख्स दूर चला जाए तो उसकी याद कभी खामोशी बनकर आती है और कभी किसी गीत की आवाज बनकर दिल को छू जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ जुदाई की टीस, दूसरी तरफ यादों की मिठास, और इन दोनों एहसासात को लता जी और रफी साहब की आवाज मिल जाए तो फिर गीत सिर्फ गीत कहां रहता है, वो बन जाता है दिल की दास्तान। और ये अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है। अब बात कर रहे हैं एक ऐसे संगीतकार जोड़ी की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में ऐसा यादगार गीत दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया, और वो संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दरअसल 1963 में आई फिल्म पारसमणि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की पहली स्वतंत्र फिल्म थी। हालांकि इससे पहले दोनों कई बड़े संगीतकारों के साथ अलग अलग और साथ में भी काम कर चुके थे, लेकिन इस फिल्म ने उनके अपने नाम से एक नए संगीत सफर का आगाज किया, और उसी सफर में लता जी और रफी साहब की आवाजें उनके साथ जुड़ी। एक ऐसा रिश्ता बना जिसने आगे चलकर हिंदी फिल्म संगीत को न जाने कितने यादगार नगमे दिए। उन्हीं नगमों में से ये यादगार नगमा आपके लिए। रात की इस रूमानी महफिल को आप भी महसूस कीजिए और सुनिए ये लाजवाब नगमा सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस गीत को लिखा है असद भोपाली साहब ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

वो जब याद आए बहुत याद आए। लता जी और मोहम्मद रफी साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म पारसमणि से, और यह फिल्म आई थी 1963 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में। अब बात एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक रही। दोस्तों, लोकगीत की मिट्टी, शास्त्रीय रंग और आधुनिक फिल्म संगीत, इन तीनों को मिलाना आसान नहीं, लेकिन आरडी बर्मन साहब ने अगले इस नगमे में ये कर दिखाया था। और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा नगमा तैयार किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। लता जी की मिठास और मन्ना डे की मजबूत शास्त्रीय पकड़ गीत को अलग पहचान देती है। ये गीत बताता है कि पंचम के संगीत में केवल वेस्टर्न बीट्स ही नहीं थे, भारतीय लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के रंगों के लिए भी उनके बहुत ही खूबसूरत पकड़ थी और उसमें गहरी समझ भी थी। उसी गीत को लेकर आए हम आपके अपने पसंदीदा इस प्रोग्राम में, और अगला जो गीत है वो है फिल्म बहारों के सपने से, और ये फिल्म आई थी 1967 में। आवाज है लता जी की और साथ ही

अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण और उसके ठीक बाद 11:40 पर मैं रहूंगा आपके साथ लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए